क्या बात है, 905-673-3333 905-673-3337 ते गल्लां बातें करांगे। और यार कैंट गल कही बाई ने, अच्छा आपां निशानियां तो याद आ गया कि निशानियां दिंदे, अज थोड़ा जिहा कल्चर तो हट के गलबात कर लिए, प्यार मुहब्बत इश्क दियां गल्लां बातें कर लिए, कराइए थोनों स्कूल दा वेला कॉलेज दा वेला याद, 905-673-3333 कर सकते हैं आपां गल्लां बातें प्यार मुहब्बत।

0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट।
0: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो होर भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तो हाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हैं। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca वेखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: प्यार दिला दे। जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6470022023 6472 2 लाइसेंस नंबर 10394।
1: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करां
2: मैं? सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
3: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा, मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
4: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4-व्हीलर अते 18-व्हीलर दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
2: कॉल करो जेएन गैरी नूं
4: 905-459-5533
2: 905-459-5533
4: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477027022 6 2 3 6 2 7 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-6 4 7 7 6 5 2 3 4 0।
2: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 647-7563-40 6477652340। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी।
1: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
2: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
1: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
2: ओहो,
1: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
2: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
3: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: What a song, man. Idhar eh song sun lo, tuhanda din always day fresh ho janda. Punjabi Virsa, hello.
1: Hanji Vir ji,
0: Sat Sri Akaal ji, ki haal hai sir?
1: ठीक ठाक आप सुनाए?
0: बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर।
1: ये मूवी है धर्मात्मा, फिरोज खान, एमा मालिनी।
0: तुसी पहले फोन ही नहीं की, मैं वेट ही कर रहा थोड़ी।
1: ये मूवी की मैंने शूटिंग देखी जी काबुल में।
0: ओ अच्छा, वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन, हेलो हेलो। लगता तुसी दसता सारिया कॉल ड्रॉप हो गई, पर फिर भी चलो कोई नहीं। मैं क्वेश्चन एक्चुअली पता की ईजी पूछ रहा थोड़ा जा, इस करके कॉल सारिया कटिया गई कॉल्स, चार लाइना मेरी बिजी सी सारिया कटिया। चलो एनीवे, लगता सारे पता लग गया, धर्मात्मा मूवी का गीत सी। यू आर राइट।

कैसे लिरिक्स है यार गीत है, पाना तुझको मुश्किल सही, पाने को कंधा फिर भी कंधा मैं तरस जाता हूँ, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को तरस जाता हूँ। वाओ।

0: बात ही कुछ ऐसी है भाई जान, बंदा तो मचल ही जाता है। हेलो।
1: हाँ जी सर जी, क्या हाल है?
0: जी सर,
1: इनका एक किसी मूवी का दूसरा गाना है मुकेश जी का, वो भी लगा दे। नहीं, कभी किसी से प्यार किया है?
0: नहीं, वो तो चलो लगा देता हूँ भाई जान, पर मेरे को ये तो बताओ इस मूवी में हिमा जी का नाम क्या था?
1: मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कोई और बता दे।
0: अच्छा, आपको पता है?
1: हाँ जी, मैंने तो इसकी शूटिंग देखी थी, आपको बताया ना।
0: अच्छा, आपने पर उस टाइम तो आपने सुना ही होगा हिमा जी का नाम क्या बोल रहे थे ना फिरोज खान साहब।
1: गाने में ही है, लेकिन मुझे पता है।
0: चलो मैं देखता हूँ किसी और को पता हो भाईजान के हेमा जी का की नाम सी धर्मात्मा मूवी दे विच, पर हल तक किसी ने बोलिया नहीं, किसी ने दसिया नहीं। एदा मतलब मेमोरीज देख लो साडीआं किन्नीआं ज्यादीआं वीक आ, क्योंकि मूवी मैं भी देखी हुई है, मैनू नहीं याद आ रहा, किसी होर नूं याद भी नहीं आ रहा कि मूवी दे विच हेमा जी का नाम की सी। 9056733337 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। A1 ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A1 ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕੇਕ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ A1 ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 905 ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮ।
2: ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋ।

0: Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fees support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. Mikvah, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
1: 32, 55, 80. इन्हां कोल सारे हाउसहोल्ड अपलायंसेस मिलणगे। हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Whoa, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow?

0: वर्ड जो है ना, इनकम तो बनाता है मगर डिक्लेयर कम करता है बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंसेस, राइट? तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि नहीं, आप 10% डाउन पेमेंट से भी घर बाय कर सकते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग है, राइट? तो 10% देखिए, डाउन पेमेंट 20 होगी मगर क्लाइंट ओनली 10% डाउन पेमेंट देनी है जी, राइट? हाउ आर गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट अ सेकेंड मॉर्गेज, ओके? सो रिमेनिंग 10% नॉट अ सेकेंड मॉर्गेज, ये नहीं अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। आपका क्रेडिट स्कोर बस 680 एंड अबव होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, चाहे आप छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहो, आपको 10% से आप घर अपना अपग्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर सबसे, और इसके अलावा सांसद किरण जी, आपको होम अपग्रेड के लिए, रेनोवेशन के लिए पैसे चाहिए साथ साथ उसी घर में, राइट? अप टू $100,000 आपको वो भी ऑन एडिशन आपको मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यू आर स्ट्रगलिंग विद 20% डाउन पेमेंट, तो 10% डाउन पेमेंट से आप घर बाय कर सकते हो।
1: धन्यवाद जी। बिल्कुल जी, मुकेश चौहान जी दे नाल तुसीं गलबात जिहड़ी है जी कर सकदे हर तरीके दी। जे तुसीं जिहड़ा जी स्ट्रगल कर रहे मोर्गेज जिहड़ी जी मंथली मोर्गेज करन दी मिस हो चुकी, तां वी तुहाडी हैल्प करदे, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स आ तां वी तुहाडी जिहड़ी जी हैल्प कर दिंदे हैगे, और तुहानू जिहड़ा है जी इमीडिएट फंड्स दी जिहड़ी है जी अचानक दी लोड़ पै गई हैगी, मुकेश जी तुहाडी हैल्प जिहड़ी है जी विदाउट अप्रेजल तुहानू जिहड़ा जी 85% तक जिहड़ा जी लोन दी वैल्यू दवा सकदे आ। तां तुसीं इन्हां दे नाल गलबात करनी आ 6472 7000 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6472 7000 ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਖੀ ਜੀ
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9057990999 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਦਾਤਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰੀ ਉਧਰ ਗਰਮ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ, ਤੇ 21 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 21 ਮਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 9057990999 ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: 32, 55, 80, 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828